जी फ्रॉम डीन एक्सेलर स्टूडियोज शिवानंद लाल भाई। स्वीट प्रोडक्शन बॉय।

0: बापे सच आ गिल
1: अगर ये फोन टच पे अगर अगर कोई बाबा आ जाएगा तेरे मामी
0: अशमाद भाई ओ गिल